आज सामने जे कोई हैगा सुरमा, आज सामने जे कोई हैगा सुरमा, ओ गुस्से च बोलिया चार वारी कुट खा के गोरे आने योदे नू धोखे नाल मारिया। आज सामने जे कोई हैगा सुरमा।